0: Soir.
1: 99.9. सो दोस्तों 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तरीक ही नहीं है, ये लखां लोकां दे सुपनियां दी पूर्ती भी सी। 1857 दी बगावत तो लैके महात्मा गांधी दे अहिंसा अंदोलन, भगत सिंह दे इनकलाबी विचारां, सुभाष चंद्र बोस दी आजाद हिंद फौज ते अणगिणत शहीदां दी कुरबानी ने आजादी दी लड़ाई नूं मजबूत कीता सी। जदों 14 अगस्त की अद्धी रात नूं पंडित जवाहर लाल नहरू ने टरेस्ट विद डेस्टिनिटी दा भाषण दिता, तद एक नवें भारत दा जन्म होया सी। 15 अगस्त 1947 भारत दे इतिहास दा सब तो महत्वपूर्ण दिन ते पवित्र दिन है। ये दिन साढ़े देश लगभग 200 साल की अंग्रेजी गुलामी दे तो आज़ाद होया। सिर्फ एक तरीक नहीं है, ये लखां लोकां दीआं कुरबानियां, आंसूआं, संघर्ष ते सुपनियां दा जित दा भी दिन है। जदों अज असीं आज़ाद हवा विच साह लैंदे हां, अपनी भाषा बोलते हाँ, अपना झंडा लहराते हाँ, तो सानू याद रखना चाहिए कि यह सब कुछ उन्हां दी कुरबानी करके ही होया है।

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: सो दोस्तों तुहानू एक 15 अगस्त 1947 दी भावुक कहानी सुनाउणा। कहिंदे कि पंजाब दे एक छोटे जे पिंड विच एक बुढ़ी माँ रहिंदी सी। उहदा कल्ला पुत्तर आजादी लड़ाई विच शामिल सीगा। कई महीनों तो वह घर नहीं आया। माँ हर शाम घर के दरवाजे को दीवा बाल के उहदी उड़ीक करती सी। 14 अगस्त 1947 की रात पिंड विच खबर फैली कि भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हो गया है, लोग कहिंदे खुशी नाल नचण लग पए। किसी ने ढोल बजाया, किसी ने मिठाई वंडी, पर वो बुढ़ी माँ चुप चाप अपने घर के बाहर बैठी रही। सवेर नू सूरज चढ़िया, पिंड दे बच्चे तिरंगा लैके गलियां विच निकले। उन्होंने माँ नू कहा कि बेबे अज तां खुशी है, तो खुश हो जाओ, देश आजाद हो गया। माँ दी अखां भर गईयां। वह हौली जी बोली, पुत्रो देश तां आजाद हो गया, पर मेरा पुत्र अजे तक वापस नहीं आया। कहिंदे कि इन्ने च डाकिया भी आ गया। उन्हें हाथ विच एक चिट्ठी सी। चिट्ठी विच लिखा सी कि माँ, जे मैं वापस ना आवां तां रोई ना, जिस दिन भारत आजाद होवे समझ लई कि तेरा पुत्र तेरे कोल आ गया है। मेरी जिंदगी हुण इस मिट्टी दी हो गई है। कहिंदे कि माँ ने चिट्ठी नूं अपने सीने नाल लाया, आसमान वल देखिया ते कंबदी आवाज़ च कहा, परमात्मा मेरे पुत्र तां नहीं आया पर उसका भारत आ गया। दोस्तों 15 अगस्त सिर्फ झंडा लहराउण दा दिन नहीं आ, ये उन्हां मावां नूं याद करन दा भी दिन है जिन्हां ने अपने पुत्र देश नूं समर्पित कीते। जदों भी तिरंगा लहरे एक पल उन्हां मावां नूं भी जरूर याद करना चाहीदा, क्योंकि आज़ादी की कीमत सिर्फ इतिहास दीआं किताबां विच नहीं, मावां दीआं अक्खां दे हंझुआं विच भी लिखी हुई कहानियां आ।

0: Swa 99.9.
1: The difference is the music.
2: Swesi, aisi gana, mere ham safar, mere ham safar. Kisi raah mein, kisi mod par. Kahin chal na dena, tu chhod kar, mere ham safar, mere ham safar. Lata ते मुकेश ने गाया बहुत बेहतरीन गीत तो सुन रहे अपना मन पाता पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का सवार 99.9 FM तो शाम कुमार के नाल तुहाडा अपना प्रोग्राम सुन वास्ते तुसी सिडनी वेस्ट विच FM बैंड ते 99.9 दी फ्रीक्वेंसी ते सुन सकते हो जां तुसी ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ www.sw.r999.com.au ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।